पिता हम भारते रे तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे कोए न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सूतर तारी तुम ते हो सो आगे आकार।

रहाओ। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़ भागी पाए, कोट जन्म के किल बिखनासे हर चरणी चित लाए। उस्तत करहो सदा प्रभ अपने,

सच साखी बिघन बिनासन सब दुख नासन सतगुर नाम दृढ़ाया खोए पाप पए सब पावन जन नानक सुख घर आया। बिघन बिनासन सब दुख नासन सतगुर नाम दृढ़ाया खोए पाप पए सब पावन जन नानक सुख घर आया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुरु गुरु हाई, कहन न जाई तेरी तिल वड़ियाई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वड़ियाईया। तुद बिन सिद्धि किनै नाम पाईया, कर्म मिलै नाहीं ठाकुर हाईया। आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तों देह तिसै क्या चारा, नानक सच सवार नहारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाओ। आखण औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागै भूख। उत भूखै खाए चलिए दुख, सो क्यों विसरै मेरी माए। साचा साहिब साचै नाहीं रहाओ, साचे नाम की तिल वड़ियाई। आख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलकै आखण पाहे। वड़ा न होवै घाट न जाए, ना ओह मरै न होवै सोग। दिंदा रहै न चुकै भोग, गुणे हो होर नाहीं कोए। ना को हुआ ना को होए, जे वड़िया ते वड़ तेरी दात। जिन दिन करकै कीती रात,

तुझ बिन दूजा कोई नाहीं, जी जंत सब तेरा खेल, वियोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाणाए सोई जन जाणै, हर गुण सद ही आख वखाणै, जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहज।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं चौपाई पुनराशिष का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोहपन भ्रिष्ट गगन ते पई।

रे कब्यो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दर इच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा।

नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पाल मोह बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधुन के सुखी एक एक की पीर पछान घट घट के पट पट की जान जब करख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आ करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन।

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभ्राता, किल भिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता, श्री अस्तुजा भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन वांछित फल पावै सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई अड़िला, सुने गुंग जो याहि सुरस न पावै, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट न तिन नर की रहै, ओ जो या की एक बार चौपाई को कहै, चौपाई संबत सत्रह है सहस पणिजै, अर्ध सहस पुन तीन कहिजै, भाद्रव सुदी अष्टमी रवारा,

फेरी बेख का राता बेख का मावा सुख ना कब हूँ पाया। बहुते पेख करा पेख तारी बिन शब्दा हमें किने ना मारी। जीवत मरा ता मुक्त पाए सच्चे नाय समाया। अज्ञान त्रिसना इस तने जलाए तिसदी बूजा जे गुर शब्द कमाए। तन मन शीतल क्रोध नवार हमें मार समाया।

हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किस नाही सतगुर ते समझ पड़ी मन माही हो दयालु कृपा कर हर जियो सतगुर की सेवा लाई है जिन सतगुर जाता तिन एक पसाता सर्वे राव रहया सुखदाता आत्म चीन परम पद पाया सेवा सुरत समाई है जिन को याद मिली वडियाई सतगुर मन वसया लिवलाई आप मिलया जग जीवन दाता नानक अंक समाई है मारू महला चौथा हर अगम अगोचर सदा अविनाशी सर्वे राव रहया घट वासी तिस बिन अवर न कोई दाता हर तिसे सरे वो प्राणी है।

तो दयानी ही हर हर नाम जिनी सदा ध्याया तिनी गुर प्रसाद परम पद पाया जिन हर सेव्या तिन सुख पाया बिन सेवा पछूतानी ही तू सब मैं वरतें हर जगन्नाथ सुहर जपै जिस गुरमस्तक हाथ हर की शरण पया हर जापी जन नानक दास दसाणी ही मारू चोले महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद

अगम निगम उद्रण जरा जम्मै आरोहै गुर अमरदास तीर्थ पियो पर गामी तारण तरण अग अंतक भजै न सल कव गुर रामदास तेरी शरण गुर अमरदास तीर्थ पियो पर गामी तारण तरण अग अंतक

ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए मन मग न चल पंथ मन धर्म से तीसन बंद।

ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए। पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान। तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत। धरती होर पर होर होर तिस्ते भारत लै कवन जोर। एह लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया कीता होए। ईता पसाओ एको कुआओ तिस्ते होए लख दरियाओ। जो तुद भावे साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास। असंख सूरमो पक्षार असंख मोल लिवलाए तार। जो तुद भावे साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार। संख अमर कर जाहे जोर संख गल वढ़त्या कमाहे। संख पापी पाप कर जाहे संख निंदक सिर करह भार। नानक नीच कह विचार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो। अखरी लिखन बोलन बाण।

रंगी अना में समस्ती स्वरूप है, कलंकन बिनाने कलंकी स्वरूप है। नमो जोग जोगेश्वर परम सिद्ध है, नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे, अपेक्षी अपरमी अभोगी अभुक्ते,

नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी सदा सिद्धा बुद्धा बृद कर्ता परम परमेश्वरं परोक्ष पालं।

चर पर जंत वह प्रसादन मृत कर में अनमृत तर में अचल राजे अटल साजे सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं।

न जाहे। एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक, देव पेव न जाने जय भेद और कतेब। तात मात न जात जा।

रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार कालहीन कला सुजुगत काल पुरख देश अंगराग न रंग जाके जात पात ना नाम आप रूप मीक नुसत एक पुरख अवधूत अंग ही न पंगनातम एक पुरख पार सर्वकंता सर्वहंता।

0: श्री चंद न सत्र न मित्र न परम न पित्र न चित्र न मित्र परे है पवित्र
1: भगवती छान तो आप भगवती।

0: नमो बिंदु बिंदु नमो बीज बीजे
1: नमो रासंग ताम संसात रूपे
0: नमो परम तत्त्व अतंत स्वरूपे
1: नमो योगे नमो ज्ञान ज्ञाने
0: नमो मत

0: साहिब संत साहिब प्यारे
1: तीन बंद मिशन के हता तुम हो पूरी चतुर दशकता
0: काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिव जी अवतरा
1: काल पाए कर विश्व प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा
0: जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो
1: जवन काल

0: नमस्कार तिसी कुमारी सकल प्रजाजन आप सवारी
1: सिंगल को सिंगल सुखदियो सतरंग को पन्नो मतियो
0: कट कट के अंतर की जान पले पुरे की पीर पछाड़
1: चीटी ले कुंचर सुला सब पर कृपा दृष्ट करुला।

0: सुनत पो संकीर गठ
1: सगरी सिर सिखाए चलो आज आज रूप से हम
0: अमृत स्वामी तुम करो सिख बाण सिख संगरो
1: दूसरी ते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रणकाता
0: जय सुनत सपनी परे तिनके दुष्ट के तो अमर
1: पुरक जवन पे परे तिहारे तिनके तुम संकट सब तारे
0: जो कल कोई के बात आए ताके का निकट नहीं आया
1: रक्षा होए काहे सब काला दुष्ट
2: निष्ठ रे तत्काला
0: पदस्तन जान हर होता के ताप तड़प मोहरे हो
2: रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छाछ सके न कोई।

0: एक बार चौपाई को कहा चौपाई
1: संबत 17 सास पड़ी जात सास फुतीर कही जाए
0: आदर सुधी असमीर विवार तीर सतदर ग्रं सुधारा सुधिया
1: भाई जब ते तुम्हें तब ते को आग रहे निया न्यो
0: राम रहीम पुराण कुरान में कहे मत एक ना मान्यो
1: सास सर्वेत सब भोपित के हम एक ना जान्यो
0: श्री सुभान

0: करे कहानी कद तेरी कित द्वारे पाइए हुकम मनियो गुरु केरा गावो सच्ची बानी
1: संत कथियो कत कहानी
0: ए मन चंचला चतराई किने ना

0: मनो क्यों विसारिए वरदाता जे अगन में हार पहुंचावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है
1: माया
0: राप मुलक है

0: साथ तबर साथ चौपाई बनवा देख कारा जलथल मैयल की उपसारा
1: आग बुझे बिगत विनाशी लोग जग जल जल पर गासी
0: हास कीट के बीच समाना राव रंग जय एक सिर जाना
1: अगवे अलग पुर के विगामी सब कट कट के अंतर जामी।

0: विनती सुन लीजिए।
1: और न मांगता तुम ते पश्चाता चित मैं सोई कीजे। संत साए सदा जग माए कृपा कर श्याम है वर दीजै।
0: वर मोहे हे शुभ कर्म ते कबहू ना डरो।
1: भगवान से जब जाए लरुनी।

0: जियो तह को जग में मुक्ते हर चित में जुद विचारे
1: देह नित नाम चढ़े पाव सागर तारे।

0: माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा
1: गुरुदेव सदा ज्ञान वंदन गुरुदेव मंत्र सोधरा
0: गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत निरोधरा
1: गुरुदेव सांत सात बुद्ध मुहूर्त गुरुदेव वास परस्परा
0: गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर ज्ञान वचन परंपरा
1: गुरुदेव कर्ता सब पाप कर्ता गुरुदेव पति पवित्र करा
0: गुरुदेव आज जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उद्रा
1: गुरुदेव संगत प्रभु में

बैठ रहियो, बाक ध्यान लगायो, नहात फिरियो लिए सात समुंदरन, लोक गायो परलोक गवायो, बास कियो बिखयान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो, साच कहूँ सुन लेहूँ सब, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, साच कहूँ सुन ले हो सब, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, सो कहो टल गुर सेविय अहनिस सहज सुपाय, दर्शन परसे आए गुरु के, जन्म मरण दुख जाय, होवै सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटी है, तुद जिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है, सजन सच्चा पातशाह, सिर साहांद साह, जिस पास बैठिया सोही है।

पाठ पुस्तक संध्या बादंग सिल बुज सबगल समादंग मुख चोट भी भूखण सारंग त्रै पाल तिहार बेचारंग गल माला तिलकले लाटंग दुई धोती बस्त्र कबाटंग।

मुखे अमृत बैण अलाए राम, अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदुड़िए, मन सुनिए हर लिव लाए राम। चिरी विछुन्ना हर प्रभ पाया,

हर प्रभु की हर कथा सुनावै राम, गुरमुख सदा राध हर मेरी जिंदुड़िए। मन चिंदियड़ा फल पावै राम, नानक भज हर शरणागति मेरी जिंदुड़िए। वडभागी नाम त्यावै राम, कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदुड़िए।

राम रवन दुरत दवन सकल पवन कुशल करण सर्वभूत आप ही देवाद देव सहस मुख फन जियो जरम करम वश कश हो ब्रा जमुना के कूल खेल खेल्यो जिन गिंद जियो नाम सार ही ए तार तज बेकार मन गय अंध सत गुरु सत गुरु सत गुरु गोबिंद जियो श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो गुर कहया मान निज निदान सच जान मंत्रे निसवासर होए कल्याण लह हे परम गत जियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन स्यों छाड़ तो होमे का फंद काट साध संग रत जियो देह गेहो त्रे स्नेहो चित बिलास जगते हो चरण कमल सदा सेओ दृढ़ता करमत जियो नाम सार ही है तार ताज बेकार मान गैंद श्री गुरु श्री गुरु सत जियो सेवक कै परपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभ सदा सलामत कहे न सके को तू कद का ब्रह्मा बिसन सिरे ते अगणत तिनको मोह भया मन मद का चौरासी लख जोन उपाई रिजक दिया सब हु कौ तद का सेवक कै परपूर जुग जुग वाहा गुरु तेरा सब सदका वाहो वाहो का बड़ा तमाशा आपे हसे आप ही चितवै आपे चंद सूर परगासा आपे जल आपे थल थम्मन आपे किया घट घट बासा आपे नार आपे फुन नारी आपे सारे आप ही पासा गुरमुख संगत सबे बिचारो वाहो वाहो का बड़ा तमाशा किया खेल बड़ मेल तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन पयाल पूर रहे आ अमृत ते मीठे जाके बचना मान है ब्रह्मा दिकरु धार दिक काल का काल निरंजन जचना गुरप्रसाद पाई है परमारथ सत संगत सेती मन खचना किया खेल बड मेल तमासा वाहा गुरु तेरी सब रचना अगम अनंत अनाद आद जिस कोय न जाने सेव बरंच तर ध्यान नितै जिस बेद बखान निरंकार निरवैर अवर नहीं दूसर कोई पंजन गण समथ तरन तारन प्रभ सोई नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रसना रसै श्री सतनाम करता पुरख गुरु रामदास चितै बसै गुरु समरथ गह करिया त्रोव बुद्ध सुमत सुमारण को फुन त्रम तुजा फहरंत सदा आग पुंज तरंग निवारण को मथुरा जन जान कही जी साच सौ और कछु न बिचारन कौ हर नाम बोहित बड़ो कल मैं पव सागर पार उतारन कौ संतत ही सत संगत संग सुरंगत रते जस गावत है त्रम पंथ तरयो तरनी तर आप रहे लिव तार न धावत है मथुरा पन भाग भले उनके मन इश्त ही फल पावत है रव के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द पतरंग प्रगटित दिन आगर गहर गंभीर अथाह आत बड सुफर सदा सब बिद रतनागर संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर कलयुग दुरत दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर जाको मन ध्यान तरे फिरत सगल जुग कबहु को पावे आत्म प्रगास को वेद बाणी सहत ब्रंच जस गावे जाको शिव मुन गह न तजात कबलास को जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट भेख किए फिरत उदास को सो तिन सतगुर सुख पाई कृपा धारी जी नाम की बड़ाई दई गुर रामदास को नाम निधान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज तिह लोग प्रगासै देखत दरस पटक प्रम भजत दुख परहर सुख सहज बिगासै सेवक सिख सदा अत लुभत अल समूह ज्यों कुसुम सो

राग नाद सब सच है, कीमत कही ना जाए। रागै नादै बाहरा, इन्नी हुक्म न बूझिया जाए। नानक हुक्मै बूझै तिन्ना रास होए, सतगुर ते सोझी पाए। सब किश तिस ते होया, ज्यों तिसे दी रजाए। सतगुर विच अमृत नाम है, अमृत कहे कहाए। गुरमति नाम निर्मलो, निर्मल नाम ते आए। अमृत बाणी तत है, गुरमुख वसै मन आए। हिरदे कमल प्रगासिया, ज्योति ज्योत मिलाए। नानक सतगुर तिन कौ मेले ओन, जिन तुर मस्तक भाग लिखाए। अंदर तिसना अग है, मनमुख भुख न जाए। मोह कुटंब सब कूड़ है, कूड़ रहया लपटाए। अन दिन चिंता चिंत वै, चिंता बद्धा जाए। जम्मन मरण न चुकाई, होमै कर्म कमाए। गुर सरन आई उबरै, नानक लै छडाए। सतगुर पुरख हर ध्याएंदा, सत संगत सतगुर पाए। सत संगत सतगुर सेव दे, हर मेले गुर मेलाए। एहो भौजल जगत संसार है, गुर बोहित नाम तराए। गुर सिखी पाणा मन्या, गुर पूरा पार लंघाए। गुर सिखा की हर धूड़ देहे, हम पापी पी गत पाहें। तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया, गुर नानक मिलिया आए। जम कंकर मार बेदारियन, हर दरगे लै छडाए। गुर सिखा नु सब आस है, हर तुठा मेल मिलाए। गुर पूरे हर नाम दिड़ाया, जिन विचों परम चुकाया। राम नाम हर कीरत गाए, कर चानन मग दिखाया। होमे मार एक लिव लागी, अंतर नाम वसाया। गुरमति जम जोहे न सकै, सच्चे नाए समाया। सब आपे आप वरतै करता, जो भावै सो नाए लाया। जन नानक नाव लए तां जीवै, बिन नावै खिन मर जाया। मन अंतर होमै रोग, प्रम भूले होमै साकत दुर्जना। नानक रोग गवाए, मिल सतगुर साधु सज्जना। गुरमति हर हर बोलै, हर प्रेम कसाई दिन सरात। हर रति हर रंग चोलै, हर जैसा पुरख न लभई। सब देखिया जगत मैं टोलै, गुर सतगुर नाम दिड़ाया। मन अणत न काहू डोलै, जन नानक हर का दास है। गुर सतगुर के गोल गोलै, सलोक महला बंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रते सेई जे मुख ना मुड़न। जिनी सिंजाता साई, चढ़ चढ़ पौंदे कच्चे बिरही। जिन्ना कार ना आई, तनी विहूणा पाठ पटंबर। पाही सेती जालै, धूड़ी विच लोड़ंदड़ी सोहा। नानक तै सहनालै, गुर कै शब्द आराधियै। नाम रंग बैराग, जीते पंच बैराइया। नानक सफल मारू एहो राग। जामु इक ता लख तौ जीती, पिन ने दर कितड़े। बामन बिरथा गयो जनम, जिन कीतो सो विसरै। सोरठ सो रस पी जीऐ, कबहू ना फीका होए। नानक राम नाम गुन गाई है, दरगै निर्मल सोए। जो प्रभ रखे आप, तिन कोय ना मारई। अंदर नाम निधान, सदा गुण सारई। एका टेक अगम।

0: रानी कछु न चेतई
1: मद माया कै अंध
0: कहु नानक बिन हर भजन
1: परत ताहे जम फंद
0: जो सुख को चाहे सदा
1: शरण राम की लेह
0: कहु नानक

0: रहियो
1: नेक सत नाहे न मीत
0: नानक मूरत चित्र ज्यो
1: छाड़त नाहे न पीत
0: नर चाहत कछ आ

रागमाला लापे हे आठो नंदन प्रथम राग भैरो वै करहे पंच रागनी संग उचरहे प्रथम भैरवी बेलावली पुनिया की गावे बंगली पुनिया सलेखी की पई बारी भैरो की पाचो नारी पंचम हरख दे साग सुनावे हे बंगालम मद माधव गावे हे ललत बेलावल गाव हे अपनी अपनी भांत अष्टपुत्र भैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आलापे हे संग रागनी पाचो थापे हे गौंड करी अर देव गंधारी गंधारी सी होती उचारी तनासरी ए पाचो गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग मेवारा प्रबल चंड कौशक उभारा खौ खटियो भौरा नंद गाय अष्ट माल कौशक संग लाए पुने आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठह तान कलोल गायन तार मिलावही ते लंगे देव करी आई बसंती संधूर सुहाई सरस अहिरी लै भार जा संग लाई पंचो आर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सोहाए सरस बाने ओ आहे बेनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र मैं कहे सवारी पुनि आई दीपक की बारी कशेली पट मंजरी टोडी कही आलाप का मोदी औ गूजरी संग दीपक के थाप का लंका कुंतल औरामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कन राकले आना अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राघव गावे हे पंचो संग बरंगन लावे बैरारी करनाटी धरी गवरी गावे आसावरी ते पाशे सिंधवी आलापी श्री राग स्यों पंचो थापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गोंड कोंभ हमीर खष्टम मेघ राग वै गावे पांचो संग बरंगन लावे सोरठ गौंड मलारी धुनी पुन गावे आसा गुन गुनी ऊचे सुर सूहो पुन कीने मेघ राग स्यों पांचो चीनी बैरा तर गज तर केदारा जबले तर नाटे ओ जल

रागन के अठारह दस बीस कष्ट राग उन गाए संग रागनी तीस सब पुत्र रागन के अठारह दस बीस। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईयां शब्दों ता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद हो वा सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कार्ज सब सुवारना सबना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसार कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा करता तेरा सब किश है जिस देह सो पावै सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावै नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिनीशा सब पुजाइया सदा कुरबान कीता गुरु विटोहो जिस दियाँ यह वडियाइया कहे नानक सुनो संतो हो शब्द थरो पियारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारी पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारे तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कहे नानक तह सुख होवा तित कर अनहद वाजे आनंद सुन हो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाए उतरे सगल वसूरे दुख रोग संतापी उतरे सुने सच्ची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आ पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आ पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे तू ठाकुर तुम पहर दास।